ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 18 अगस्त मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचने की 60 दिन की समय सीमा समाप्त हो रही है और ऐसे में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जमकर लताड़ते हुए मीडिया से कहा कि उन्हें जल्दी नहीं है और उनके पास कोई समय सारणी नहीं है। ट्रंप ने सोमवार को फॉक्स न्यूज़ को दिए टेलीफोन साक्षात्कार में ये टिप्पणी की। उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ वार्ता कर रहे ओमान को भी चेतावनी दी। ट्रंप ने ओमान को धमकी देते हुए कहा कि अगर वो बाधा डालेगा तो उस पर भी बमबारी की जाएगी। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि अमेरिका ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के साथ गुप्त माध्यम से बातचीत कर रहा है, लेकिन ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की एक खबर ट्रंप के बयानों का खंडन करती है। इसमें IRGC के एक प्रवक्ता के हवाले से ट्रंप के प्रत्यक्ष वार्ता के दावे को खारिज करते हुए इसे उनकी कल्पना बताया गया है। उधर रॉयटर्स ने एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से बताया कि अगर अमेरिका कुछ ही हफ्तों में अंतरिम शांति समझौता लागू करने में विफल रहा तो ईरान हमले शुरू कर सकता है। अधिकारी ने चेतावनी दी कि ईरान अब अपनी नीति को रक्षात्मक से पूरी तरह आक्रामक बना रहा है और जलडमरू मध्य तथा व्यापक क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि रूस के नियंत्रण वाले 4 द्वीपों में से एक की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया यात्रा पर जापान की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद उन्होंने रूस में मौजूद जापानी राजदूत को तलब किया था। गौरतलब है कि जापान इन द्वीपों पर अपना दावा करता है। लावरोव ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि जापान ने पूरी तरह से अस्वीकार्य बयान दिया है कि रूसी राष्ट्रपति रूसी क्षेत्र का दौरा नहीं कर सकते। जापान में इन द्वीपों को उत्तरी क्षेत्र कहा जाता है। जापान सरकार अपने रुख पर कायम है कि ये द्वीप जापानी भूभाग का अभिन्न अंग हैं। सरकार का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन द्वीपों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। बृहस्पतिवार को जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए ने बल देते हुए कहा था कि ऐतिहासिक तथ्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ये द्वीप जापानी भूभाग का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा था कि पुतिन की यात्रा इन द्वीपों पर जापान सरकार के निरंतर रुख से मेल नहीं खाती। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने विरोध दर्ज कराने के लिए रूसी राजदूत निकोलाई नोजद्रेव को तलब किया था। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत और दामाद जेरेड कुशनर हाल ही में गाजा के हालात को लेकर हमास और इसराइल के नेताओं से मुलाकात करते आए हैं। उन्होंने सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इजरायली समाचार पत्र हारेट्स के अनुसार यरूशलम में हुई ये बैठक 3 घंटे चली। समाचार पत्र के अनुसार बैठक में शांति मंडल के सदस्य भी शामिल हुए। ये मंडल एक बहुराष्ट्रीय इकाई है जिसे ट्रंप ने गाजा में सत्ता हस्तांतरण की देखरेख के लिए गठित किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार नेतन्याहू और शांति मंडल के बीच गहन और रचनात्मक चर्चा हुई। कार्यालय ने बताया कि वे गाजा के निरस्त्रीकरण और विसैन्यीकरण पर एक समूह सहित कई कार्यकारी दल गठित करने पर सहमत हुए हैं। पिछले महीने शांति मंडल ने हमास के निरस्त्रीकरण और इजरायली सैनिकों की वापसी के संबंध में एक रूपरेखा जारी की थी, लेकिन नेतन्याहू ने जोर दिया कि जब तक हमास का पूर्ण निरस्त्रीकरण नहीं हो जाता तब तक इजरायली सेना वापस नहीं हटेगी। कुशनर ने एक दिन पहले मिस्र में हमास के मौजूदा नेता खलील अल हय्या से भी मुलाकात की थी। बाद में ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि इजरायल को गाजा पर हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि हमास हथियार डालने पर राजी हो गया है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने उनके वार्ता के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों के साथ मुलाकात में ये टिप्पणी की, लेकिन उन्होंने विवरणों का खुलासा नहीं किया। दक्षिण कोरिया के संबंध में ट्रंप ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि दक्षिण कोरिया ने ईरान के मामले में अमरीका की मदद करने से इनकार किया। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने दक्षिण कोरिया से कहा था कि अमरीका किम जोंग उन से आपकी रक्षा कर रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह अजीब है कि दक्षिण कोरिया ईरान पर सैन्य कार्रवाई में अमरीका की मदद नहीं कर रहा है। रविवार को ट्रंप ने कहा कि दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास उत्तर कोरिया को पूरी तरह से अनुचित और शत्रुतापूर्ण संकेत भेजता है। ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने पेंटागन को अगले दिन से शुरू होने वाले संयुक्त अभ्यासों का पैमाना काफी हद तक कम करने का आदेश दिया था। जब उनसे पूछा गया कि वे उन आलोचकों को कैसे जवाब देंगे जो कह रहे हैं कि ट्रंप पुराने सहयोगियों के हितों की बजाय विरोधियों के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो इस पर ट्रंप ने बल देते हुए कहा कि वे माहौल को अधिक सुरक्षित बना रहे हैं। जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर कुमामोतो में आए भीषण भूकंप के 3 सप्ताह बाद भी 3,000 से अधिक लोग आश्रय स्थलों में हैं, जबकि कई अपनी कारों या क्षतिग्रस्त मकानों में रह रहे हैं। 28 जुलाई के भूकंप की तीव्रता जापान के भूकंप मापी पैमाने पर सर्वोच्च 7 थी। सोमवार दोपहर 2 बजे तक मृतकों की संख्या 39 थी, जिनमें आपदा संबंधी कारणों से मरने वाले लोग भी शामिल हैं। भूकंप से 31,951 मकान क्षतिग्रस्त हो गए और इनमें से 1,449 पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। 70 निर्धारित आश्रय स्थलों में अब भी 3,053 लोग रह रहे हैं। अन्य जगहों पर शरण ले रहे निवासियों की संख्या का पता लगाना कठिन है, जिससे ये चिंता बढ़ रही है कि सहायता की कमी से और अधिक लोगों की मौत हो सकती है। प्रीफेक्चर सरकार नगर पालिकाओं से ऐसे निवासियों के बारे में जानकारी देने का अनुरोध कर रही है ताकि सहायता प्रदान की जा सके। सबसे अधिक प्रभावित शहरों उकी और यात्सुशिरो तथा हिकावा नगर में लगभग 7,380 मकानों में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि अगस्त अंत तक जलापूर्ति बहाल हो जाएगी। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।